हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं? शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का, आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है, देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
5: सुनो शारदा 90.8 FM.
3: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। चलिए, एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और जाहिर सी बात है कि उसके रिगार्डिंग आप जानना समझना चाहते हैं कि जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले सामना होता है या कॉलिंग होती है एचआर की आपके लिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आपकी क्या डिमांड है, यानी कि रुपये पैसों की क्या डिमांड है। इसी से रिगार्डिंग आज मेरे साथ एक शख्सियत जुड़ रही है जो हमारे साथ शारदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एंड एचआर, शारदा ग्रुप के हेड हैं एचआर डिपार्टमेंट में, मिस्टर गौरव डिमरी जी। इनके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि सर ने आर्मी में देश की सेवा की है और लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और उसके बाद इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ, ये सारी बातें करेंगे। तो गौरव सर, आपका सुनो शारदा 90.8 FM में बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू गगन जी, रियली एन ऑनर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म।
3: सर, ये हमारा सम्मान है कि आपने समय निकालकर आप हमारे बीच आए। तो निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको जरूर फायदा मिलेगा कि एचआर का जो फील्ड है किस तरीके का फील्ड है, यहाँ फ्यूचर क्या है, और पहले तो आप इसके बारे में बताइए।
6: जहां तक एचआर की बात है, दिस इज एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेस। सो टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, मशीनरी कहीं की कहीं अपग्रेड हो जाए, Even if a man has to reach the other planets in the galaxy, still that man has to be managed. So for any organization to succeed, any field, more important is ki jo log wahan us organization ka hissa hain, unka well-being, unki career growth, unka day-to-day routine, unki job responsibilities. To ek bahut hi एक ऐसी फील्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज जहां अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है एंड एबिलिटी एंड टू कंट्रीब्यूट मैटर्स एंड यू आर एबल टू रियली इन्फ्लुएंस द माइंड्स एंड लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स एंड इवन बियॉन्ड ऑफिस आवर्स। सो दैट अपॉर्चुनिटी एन ऑल एनकम्पासिंग रोल ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड प्रोवाइड करती है।
3: जी जी गौरव सर, आप मुझे थोड़ा ये डिटेल में ये भी बताइए कि जब आप किसी को रिक्रूट कर रहे होते हैं तो किन किन खास बातों को आप ध्यान में रखते हैं ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उस चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने आप को तैयार कर पाएंगे किसी इंटरव्यू के जाते वक्त।
6: देयर इज अ ट्रिक क्वेश्चन आई सपोज। सी द पॉइंट इज दैट सम टाइम्स लोगों को लगता है कि उनका कैंडिडेचर जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिग्री बहुत स्ट्रांग हो गया है। I would only say that today the requirements of a job are just not related to the academic degree. Academic degree is an outcome. आपने एक एग्जाम में किस प्रकार से उस दिन परफॉर्म किया।
3: जी।
6: Probably उसी एग्जाम में आप दो दिन पहले या पांच दिन बाद वही पेपर देते तो शायद वो रिजल्ट नहीं आता।
3: Ups and downs हो सकते थे marks.
6: So that correct. So that outcome is one factor.
3: जी।
6: लेकिन what matters is more than that degree is your human qualities, your behavior, your conduct, your not only the knowledge of your subject, but the knowledge of understanding the application of that subject. कि मैं उस पोस्ट पर बैठकर उस डिग्री की मदद से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में. सो अ कैंडिडेट मस्ट अलाइन हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन विद हिज मेंटल मेकअप एंड हिज प्लान टू कंट्रीब्यूट.
3: चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं. कोई आपके दिल के आसपास कोई एक ऐसा खास गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं, वही गाना हम प्ले करेंगे अपने लिसनर्स के लिए.
6: चूंकि इट्स यूनिवर्सिटी का चैनल है एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल मस्ट बी लिसनिंग टू इट, तो आई थिंक लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग था.
3: क्या लक्ष्य, बहुत बहुत ही खूबसूरत गाना है. और ये गाना आपके प्रोफाइल को या यू कहें कि आपके प्रोफेशन को रिलेट करता है कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है. तो लिसनर्स, यहाँ पर जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रद्धा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मैं जिंदगी में ऐसी शख्सियत आपको जब मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपको जानना समझना बहुत जरूरी है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके से आपकी कार्य प्रणाली है, आपका जो वर्क नेचर है वो कैसा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गौरव डिमरी जी के बारे में, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप हैं। और बहुत सारी बातें इन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले हमारे श्रोताओं को बताई। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: एक कैंडिडेट को हायर करते वक्त नो डाउट आपने जो बात बताई कि डिग्री मान्यता रखती है, लेकिन इतना भी नहीं है। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि आपके पास अनुभव क्या है। एक फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर आप मुझे पहला काम नहीं देंगे और अनुभव की बात करेंगे तो फिर वो मेरा अनुभव कहाँ से कैसे शुरू होगा। तो मैं अनुभव की ही बात करता हूँ कि अनुभव को आप कितना वरीयता देते हैं, या उस वक्त जो आपने कहा कि अगर वो इंटरव्यू अच्छी तरीके से फेस कर पा रहा है, आपके सवाल का जवाब दे पा रहा है और डिग्री में अप्स एंड डाउन्स हैं, तो मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से आप उस व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं?
1: जी देखिए, एवरी जॉब कम्स विद अ जॉब रिक्वायरमेंट, और उसकी जॉब की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इतनी एज होनी चाहिए, इतना मिनिमम एक्सपीरियंस, इस ये डिग्री, दैट हैज टू मैच
0: जी।
1: लेकिन वो कोई भी कैंडिडेट जो उसको मैच करता है वो उसको इंटरव्यू रूम के डोर तक ले आता है। इंटरव्यू रूम के अंदर उसकी जो क्वालिटीज हैं
0: जी,
1: चाहे वो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टेक्निकल नॉलेज हो और एबिलिटी टू एंगेज हो, वो बहुत मैटर करता है।
0: क्या?
1: क्योंकि अल्टीमेटली डिग्री हैज गिवन द थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, बट एक टीम में काम करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, कंपेटिटिवनेस लाने के लिए, टीम को साथ लेकर चलने के लिए, एक ऑलराउंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, एक कैंडिडेट की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स तो मार्कशीट और डिग्री ने दिखा दी। सो इन एन इंटरव्यू अ पर्सन शुड नॉट फोकस ओनली ऑन व्हाट ही हैज थ्योरेटिकली लर्न्ड, दैट हैज ब्रॉट हिम टू द इंटरव्यू,
0: राइट?
1: व्हाट विल डिफरेंशिएट फ्रॉम हिम टू अदर्स एंड गेट अ सिलेक्शन इज हाउ ही हैज इवॉल्व्ड इनटू लीडरशिप स्किल्स, कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली, अचीव्ड मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, His ability to zealously work for his goals, that matters.
0: सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस बात का लोग गलत मायने निकाल लेते हैं कि टॉकेटिव होना बहुत जरूरी है, बातूनी होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज अलग है और जो आप बता रहे हैं वो चीज अलग है।
1: जी जी, absolutely. One has to, in minimal words, one can convey a lot.
0: क्या बात है।
1: सो इंटरव्यू के टाइम्स भी लिमिटेड होते हैं, उस ड्यूरेशन में आपको अपने बारे में इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत लंबा बताना है, बट
0: शॉर्ट
1: इन शॉर्ट टाइम फ्रेम यू कैन अचीव, एंड द इंटरव्यू पैनल्स आर जनरली वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल हु कैन कम टू नो द डेप्थ ऑफ योर क्वालिटी एंड नॉलेज।
0: चलिए, यहाँ पर फिर एक ब्रेक आ रहा है जो कि म्यूजिकल ब्रेक है, और गाना जो आप अक्सर सुनते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे दिल के आसपास ये खूबसूरत गाना है जो मैं अपने लिसनर्स को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी, सो वन सॉन्ग विच रियली आई लिसन एट टाइम्स व्हेन आई टेक अ ब्रेक इज द सॉन्ग कबीरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, बिकॉज़ दैट आल्सो सॉन्ग हैज गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट्स मीनिंग।
0: रियली नाइस, आप जो गाने का सिलेक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिलेक्शन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी से रिलेट कर ही रहा है। सो लिसनर्स, यहाँ पर एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, सो आप कहीं जाएगा मत। एचआर का जो क्षेत्र है, एचआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जब आप किसी एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यही सारी बातें हो रही हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रद्धा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू वेरी मच। थैंक
0: यू। आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं जो कि आपकी वीडियो बना रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि मेरी भी वीडियो बना लीजिए। बहुत हंसमुख चेहरा है। आप हंसते रहिए जनाब, मुस्कुराते रहिए। सो इंसान की मुस्कुराहट कनेक्ट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एचआर का हम देखते हैं कि मुस्कान है तो जाहिर सी बात है कि बंदा खुश मिजाजी के साथ, मतलब वो डर नहीं रहेगा, डर से मतलब वो बेफिक्र नहीं हो जाएगा, लेकिन एक माहौल खुशनुमा हम बना देते हैं। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि वो मुस्कुराहट गायब है, चाहे वो एक जो इंटरव्यू देने आ रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है। एक बात ये, दूसरी बात इसी से रिलेटेड, चूंकि एचआर की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, भाषा कितना मैटर करती है सर। कभी कभी होता क्या है कि किसी व्यक्ति के पास योग्यता है लेकिन अंग्रेजी का जो धारा प्रवाह है वो उसके पास नहीं है। आपकी बात को वो समझ पा रहा है और अपनी बात वो आप तक पहुंचा पा रहा है। वर्तमान समय में हम जब देखते हैं कि मोदी जी लोकल डायलेक्ट की बात करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस भाषा में आप अपनी पढ़ाई को अब आगे लेकर जा सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्लीज?
1: आपने जो सवाल, वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, एंड इवन टूडे a lot of people who are talented, who possess qualities, maybe शायद वो थोड़ा अपने आप को दो कदम पीछे रखते हैं कि शायद उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में महारत नहीं है।
0: जी।
1: लेकिन प्योरली फ्रॉम HR पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लीजिए, या UPSC हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो या गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। यू कैन अपीयर इन द लैंग्वेज। व्हाट मैटर्स इज आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, और आपके अंदर अगर काबिलियत है तो उसके लिए उस काबिलियत के भरोसे आप किस प्रकार से लोगों को एंगेज करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कौन सी
0: भाषा
1: का इस्तेमाल होता है। और ये दिस इज, चाहे इट इज ऑन अ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, चाहे इट इज एट लीडरशिप स्पेक्ट्रम इन इंडस्ट्री और इन अ यूनिफॉर्म सर्विस और इन अ सिविल सर्विस, द पर्सन इन्फ्लुएंसेस एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो किसी भी कैंडिडेट को कभी भी इस चीज पे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी फलाना भाषा पे महारत नहीं है और फलाना भाषा से मैं वीक हूं। इट डजंट मैटर, आपकी काबिलियत मैटर करती है।
0: क्या बात है। सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए HR के हेड है मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर है HR शारदा ग्रुप में। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सर कभी कभी ऐसा भी होता है, इससे रिलेटेड ही सवाल आ रहे हैं, चूंकि मुझे लगता है कि शायद हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। इंटरव्यू के लिए लेटर्स या यू कहेंगे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आती हैं, और फिर सामने वाले को लगता है कि मेरा इंटरव्यू का कॉल होगा नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम, एक वक्त के बाद किसी बंदे को कॉल जाता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है कि इस ग्रुप से मुझे कॉल आया। इट मींस कि जो मेरा सीवी था वो एक रिजर्व में रखा गया था, उसको संजो कर रखा गया था। या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम इनको भूल जाते हैं, बैंक नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए कि क्या होता है।
1: अगेन आई वुड से वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि ही इज बेस्ड ऑन द वैकेंसी फॉर अ जॉब, वेदर ऑन अ पोर्टल और अदरवाइज, वो फुली क्वालिफाइड है उस प्रोफाइल के लिए, लेकिन फिर भी शायद उसको वो कॉल नहीं आता। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। कई बार पोजीशंस निकलती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से ऑन होल्ड हो जाती हैं। कई बार पूल ऑफ कैंडिडेट्स को और वाइड करना पड़ता है, कई बार सिलेक्शन को नैरो डाउन करने के लिए क्यूआर्स चेंज करनी पड़ती हैं।
0: जी जी।
1: सो ऐसा, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को अगर वो क्वालिफिकेशन को मैच करता है तो आज नहीं तो कल ही विल, इफ ही इज क्वालिफाइड,
0: तो कॉल जाता ही जाता है।
1: सो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट।
0: सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए एचआर के हेड है मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो की डायरेक्टर है एचआर शारदा ग्रुप में। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से गौरव डिमरी जी, जो कि बहुत अच्छा अनुभव अपना मिलिट्री क्षेत्र में इन्होंने देश की सेवा की है, एक अनुशासन को लेकर शारदा विश्वविद्यालय में आते हैं। और शायद जब किसी को रिक्रूट करते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि बंदा अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि अनुशासन अगर आपके जीवन में होगा तो निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। फाइनली आपकी तरफ से एक मैसेज अगर मैं कहूं कि एक श्रोता को, एक लिसनर्स को, या जो कोई इंटरव्यू देने आ रहा है उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि किन किन खास बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू देते वक्त?
1: As I said earlier also, educational qualification और technical knowledge आपको इंटरव्यू के दरवाजे पे ले आएगा।
0: जी,
1: इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कैंडिडेट सक्सेसफुल होने के लिए अपना इमोशनल क्वेश्चन पे भी ध्यान दे कि वो किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते आप एंगेज नहीं कर सकते। जब तक आप एंगेज नहीं कर पाएंगे आप लीड नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस को लीडर्स चाहिए, वो लोग चाहिए जो प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट कर सके, चैलेंजेस को एंटिसिपेट कर सके एंड अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, नॉट कि चैलेंजेस का होने का वेट करें और बोले कि मेरी डिग्री मुझे क्वालिफाई करती है, मैं इन चैलेंजेस को अब सॉल्व करूंगा। इट शुड बी द एंटिसिपेशन ऑफ अ चैलेंज, इट शुड बी the ability to engage with people, emotional quotient and positivity, honesty of purpose, the highest levels of integrity which will make you succeed.
0: क्या बात है?
1: Other than the degree only.
0: So listen, मैं समझता हूँ इन बातों को अगर आप गांठ बांध लेंगे तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे, यानी कि वो जॉब आप हासिल कर ही पाएंगे। चलिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। और बस यही कहूंगा कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।
1: बहुत

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं? शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का, आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है, देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई।

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। राम राम दोस्त, सलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। और भारत का स्वतंत्रता दिवस आज 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, तो इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी दिली दुआएं शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 के दिन ही भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी, ये हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इस बात को हमें भूलना नहीं होगा कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इस आजादी के लिए हमने दिन रात एक किया, इस आजादी के लिए हम अंग्रेजों के पीछे पड़े रहे, इस आजादी के लिए लोगों ने ना अपना घर देखा, लोगों ने ना अपने सपने देखे, सपना देखा तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के मौके पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है, जैसे कि उन्होंने पहले भी की थी। और आज के दिन हर साल देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, इसके बाद देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस दिन को देशभक्ति के जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण समारोह के साथ मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक देशभक्ति गाना सिर्फ सुरु शारदा 90.8 एफएम पर।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं हूं गगन आपके साथ। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी, ये बात हम सब जानते हैं, समझते हैं और इस बात को कभी भूलेगा मत। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इस आजादी के लिए जंग आजादी में लोग कूदे थे, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, तब जाकर कहीं हमें आजादी मिली थी। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस साल की जो थीम है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, विकसित भारत रखी गई है। ये साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। भारत सरकार का लक्ष्य भी आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए इस यज्ञ में आपकी आहुति चाहिए, मेरी आहुति चाहिए और हम सब मिलकर सोचेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। यानी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी हम गुलाम हैं, उस भ्रष्टाचार के गुलाम हैं जो हमें कुछ अच्छा नहीं करने देता। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। तो ऐसी मानसिकता से अपने आप को बचा कर रखिए। हमें ईमानदारी के साथ काम करना है, ईमानदार बनकर काम करना है, देश को विकसित बनाना है। हम अपनी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं, वही रिस्पेक्ट हमें दूसरों के लिए देनी होगी, दूसरे के परिवार को देनी होगी। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात करते हैं, कहते हैं ये हमारा राइट है, लेकिन एक राइट हमारा ये भी बनता है जो हमारा कर्तव्य है, देश को आगे लेकर जाने का। तो चलिए ऐसी कुछ खास बातें मैं आप तक यूं ही पहुंचाता रहूंगा। और आज का दिन बड़ा खास दिन है, उत्साह का दिन है, चारों तरफ एक पर्व है क्योंकि आज आजादी का जश्न है। तो ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर मेरे यानी गगन के साथ। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से मधुर गीत संगीत को, देशभक्ति सॉन्ग को सुनने का। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इतिहास को जब हम पलटते हैं तो हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हमने सब कुछ अपना देश के लिए लगा दिया। 15 अगस्त 1947 को भले ही देश आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी के लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे तमाम सेनानियों ने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। ना दिन देखा ना रात देखी, सिर्फ और सिर्फ एक सपना जिसको देखा, जिसको जिया गया कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होना है, देश को आजाद कराना है। भारत माँ के पैरों में जो जंजीरें जकड़ी हुई हैं, उन बेड़ियों को हमें तोड़ना है, और ये हुआ भी। भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के रूप में लगी थी, और इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में स्थानीय जनता का दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद अंग्रेजों को पता लग गया कि वो स्थानीय सशस्त्र बलों पर नियंत्रण खो रहे हैं, हालात बदल चुके थे। ऐसे में ब्रिटिश संसद ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश जारी कर दिया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को शाही संस्तुति मिलने पर ये विधेयक अधिनियम बना। इस अधिनियम में भारत पाकिस्तान का विभाजन, रियासतों को दोनों में से किए एक देश के साथ रहने के अधिकार सहित कई प्रावधान थे। तो ऐसी खास जानकारी मैं आप तक यूं ही पहुंचाता रहूंगा, बस मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर कुछ गतिविधियां भी हैं जैसे कि मैं जिक्र करना चाहूंगा। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य माईगव के सहयोग से आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं और जनता के बीच देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना है। इनमें देशव्यापी क्विज प्रतियोगिताएं हो रही हैं, रील मेकिंग प्रतियोगिताएं हो रही हैं, देशभक्ति पोशाक प्रतियोगिताएं चल रही हैं, पेंटिंग प्रतियोगिताएं हो रही हैं, निबंध प्रतियोगिताएं शामिल हैं ताकि नागरिकों में रचनात्मकता और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा दिया जा सके। उन्हें देशभक्ति की अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। इन पहलों को भारत की समृद्ध विरासत के प्रति गहरी प्रशंसा दिलाने, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने और स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाने के लिए नागरिकों को एकजुट करने के लिए डिजाइन किया गया इस तरीके से खास कार्यक्रम, और उस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्यक्रम आज हो रहे हैं। तो इन गतिविधियों में आपने अपनी भागीदारी दर्ज की, और जिन्होंने भागीदारी दर्ज की, जो आज धरातल पर उतर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कहते हैं कि दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, दुनिया चलती है सबको साथ लेकर चलने वाला चाहिए। तो बस ऐसी अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच है कि विकसित भारत बनाना है, तो निश्चित तौर पर हम विकसित बनेंगे, जिसमें कि आपका योगदान, मेरा योगदान। मत देखिए कि कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने आप को देखें ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें देश के लिए। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? एक पौधा ही तो लगाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी छोटी छोटी बातों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये धरा, ये वसुंधरा हरी भरी होगी सावन के मौसम में। सो प्लीज अपनी माँ के नाम पौधा जरूर लगाइए, है ना। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी अपील करते हैं, हर घर तिरंगा फहराने की अपील करते हैं। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को जारी रखने की बात कही है। हर साल भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं। 15 अगस्त वाले दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश होने के साथ साथ जगह जगह झंडा फहराया जाता है। इवन आप देखें कि लोग अपनी गाड़ियों पर झंडा लगाते हैं, अपने घरों पर झंडा लगाते हैं, और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। सो प्लीज इस दिन को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करिए, मनाइए, अपना ख्याल रखिए, देश को नमन करिए, और देश में कहीं ना कहीं अपना योगदान दीजिए, ताकि असल मायने में वो है स्वतंत्रता दिवस, असल मायने में हम देश को आगे लेकर जा रहे हैं। तो बस एक और खूबसूरत गाना, देशभक्ति गाना, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर मेरे यानी गगन के साथ।

0: देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन श्रद्धांजलि।
1: न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज आसमान में गर्व से लहरा रहा है, जो देश की कठिन संघर्षपूर्ण स्वतंत्रता और चिरस्थायी एकता का प्रतीक है। केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे और बीच में अशोक चक्र वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय ध्वज की यात्रा एक राष्ट्र की लचीलापन, परिवर्तन और सामूहिक भावना की कहानी है। चलिए एक छोटी सी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात करते हैं फैक्ट के साथ, तिरंगे का जन्म, यानी कि आज हम जिस तिरंगे को जानते हैं उसकी कल्पना सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने की थी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। 1921 में वेंकैया जी ने गांधी को एक ध्वज डिजाइन भेंट किया, जिसमें दो रंग शामिल थे, लाल और हरा, जो भारत के दो प्रमुख समुदायों, हिंदू और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी ने शांति और भारत के बाकी समुदायों के प्रतीक के रूप में एक सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया, साथ ही आत्मनिर्भरता को दर्शाने के लिए एक चरखा भी जोड़ा। और इसमें कब कब बदलाव हुए इसके बारे में भी जानेंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा नमन जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जान की बाजी लगा दी, उनको हम नमन करते हैं और इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको गर्व होगा। अगर हम कुछ जाने अनजाने में गलत कर रहे हैं तो अपने आप को सुधारें, ताकि उनको हम अच्छा महसूस करा सके। वरना जिस तरीके से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिस तरीके से कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो कि नहीं होना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को बुरा लगता होगा कि काश हम लड़ते ना। और हम लड़े हैं तो किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो आज आपस में लड़ रहे हैं। तो इस बात को समझिए, हमें एक रहते हुए अनेकता में एकता दिखाते हुए भारत को विकसित भारत बनाना है और आगे लेकर जाना है। इस स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त है यहाँ पर एक और छोटे से मधुर गीत संगीत को सुनने का, देशभक्ति संगीत को सुनने का। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, मेरे यानी गगन के साथ।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन श्रद्धांजलि। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत वीर जवानों ने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। नमस्कार, मैं हूं गगन आपके साथ और इस स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं झंडे के इतिहास के बारे में बात कर रहा था, इसमें कब कब बदलाव हुए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात वहां से आगे लेकर चलना चाहूंगा। 1921 में वेंकैया जी ने गांधी को एक ध्वज डिजाइन करके भेंट किया था, तो इसमें जो हाथ रहा, सबसे पहले 1921 में वेंकैया जी ने इसकी शुरुआत की, लाल और हरा रंग पहले था, महात्मा गांधी जी ने इसमें सुझाव दिया जिस वजह से चरखा और सफेद रंग इसमें जोड़ा गया। अब बदलाव का हुआ बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में वर्तमान स्वरूप लेने से पहले कई बदलाव हुए। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के उस समय के कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर यानी ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसे स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। कुछ समय बाद इस ध्वज को भगिनी निवेदिता के ध्वज के नाम से जाना जाने लगा। मैडम कामा और उनके निर्वासित क्रांतिकारियों के दल ने 1907 में दूसरा बड़ा झंडा फहराया। ये राष्ट्रीय ध्वज के समान था, लेकिन कमल की जगह सप्त ऋषि को दर्शाने वाले सितारों ने ले ली। इस झंडे को पहले भारतीय झंडे का दर्जा प्राप्त हुआ जो किसी विदेशी भूमि पर फहराया गया था। इसे बर्लिन समिति ध्वज भी कहा जाता था। ये झंडा पहले झंडे के

अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देश भक्तों के खून की धारा याद कर लें। 1917 में डॉक्टर एनी विसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा तीसरी बार झंडा फहराया गया था। ये राष्ट्रीय ध्वज पिछले दो से बहुत अलग था, क्योंकि इसमें लाल और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां सप्तऋषि तारामंडल के आकार में, इसमें सात तारे थे। इसमें शीर्ष मक्खी के सिरे पर एक अर्धचंद्र और एक तारा होता है, लेकिन ये झंडा जनता के बीच लोकप्रियता हासिल नहीं कर सका। डिजाइन में कई वर्षों में कई बदलाव हुए और 1931 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से तिरंगा झंडा अपना लिया। इस संस्करण में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था, बीच में चरखा था। इस ध्वज को एक एकीकृत प्रतीक के रूप में देखा गया, जो भारत के विविध समुदायों और स्वतंत्रता के लिए उसकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता था। तो आज हमने स्वतंत्रता के बारे में बात की, किस तरीके से हमें आजादी मिली, किन किन लोगों का योगदान रहा। हम नहीं भूल सकते सुभाष चंद्र बोस को, हम नहीं भूल सकते महात्मा गांधी जी को, हम नहीं भूल सकते मंगल पांडे को, हम नहीं भूल सकते उन अनगिनत अनाम योद्धाओं को जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी, प्राणों की बलि दी। उनकी वजह से आज हमारा देश आजाद है, बस इसको हमें संभाल कर रखना है। वो कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं और यही कहता हूं कि बस हमें देश को संभाल कर रखना है, ईमानदारी के साथ काम करना है, अपनों को गले लगाकर चलना है, आगे बढ़ना है, देश में योगदान देना है और भारत को विकसित भारत बनाना है। तभी असल मायने में हम अपने सेनानी को नमन कर सकेंगे, तभी असल मायने में हम उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे यानी गगन गौतम को दीजिए अनुमति। नमस्कार और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं? शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का, आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है। देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: 90.8 आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ कई। इसी के अंतर्गत आज एक विषय है HPV वैक्सीन। इसी संबंध में बात करने के लिए डॉक्टर अजय खेड़ा जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं स्मार्ट की सहयोगी। आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय खेड़ा,
5: जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 36 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव रखते हैं। वर्तमान में डॉक्टर खेड़ा एनजेंडर हेल्थ नई दिल्ली में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां उन्होंने देश में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर खेड़ा ने नई दिल्ली विश्वविद्यालय से MBBS और MD की डिग्री प्राप्त की है, साथ ही गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में डिप्लोमा भी किया है। भारत के अलावा उन्होंने ओमान और म्यांमार में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कार्य किया है। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने अनुभव को साझा करने के लिए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।
4: आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन।
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझाइए कि HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या होता है और ये महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर की कैसे वजह बन सकता है।
6: थैंक यू वेरी मच यू नो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि HPV, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जैसे हमारे मालूम है कि बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से एक वायरस होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की एक खास बात है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। जैसे कुछ वायरसेस होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जिसको नजला जुकाम कहते हैं, कुछ वायरसेस आपके आंख में इन्फेक्शन करते हैं। तो ये जो वायरस है जिसका नाम HPV वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है। और इसकी जो वजह है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, इसका भी जो ट्रांसमिशन भी होता है ये थ्रू सेक्सुअल रूट होता है। तो इतना ही जानना काफी है कि एक तरह का ये वायरस है। और जैसे बाकी वायरसेस होते हैं जुकाम खांसी के, डायरिया के, आंख में इन्फेक्शन के, स्किन में इन्फेक्शन के, तो ये भी एक तरह का वायरस है। और इसकी खास बात यह है कि आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अटैक करता है।
5: सर, आजकल HPV वैक्सीन की काफी चर्चा हो रही है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये टीका लड़कियों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
6: ये इसलिए लड़कियों में बहुत जरूरी माना जाता है। वैसे तो इस HPV वैक्सीन को हम लड़कों में भी दे सकते हैं, लड़कियों में भी दे सकते हैं, पर जो हमारी जो साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि ये जो HPV इन्फेक्शन होता है, यदि लड़कियों में ये बना रहता है इन्फेक्शन, तो उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लड़कों में यदि एचपीवी इंफेक्शन होगा तो उनको वॉट्स वगैरह होते हैं, पर लड़कियों में क्योंकि उनकी सर्विक्स होता है, उनका बच्चेदानी होती है, सर्विक्स को आम भाषा के लिए बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, तो ये एक तरह का बच्चेदानी का कैंसर है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और ये स्टडीज बताती हैं कि यदि एचपीवी इन्फेक्शन हो गया है आपको तो आपको काफी पॉसिबिलिटी है सर्वाइकल कैंसर होने की। और ये सर्वाइकल कैंसर एकदम नहीं होता, इसको कुछ समय लगता है, 8 से 10 साल इन्फेक्शन रहेगा, कंटिन्यूस इन्फेक्शन रहेगा, तो उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना रहती है। क्योंकि तो ये भी माना गया है साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से कि 70 से 80% केसेस में जो इन्फेक्शन होता है वो अपने आप डिसअपियर भी हो जाता है, सिर्फ 10 से 20% लोगों में वो इन्फेक्शन बरकरार रहता है, और जिससे प्री कैंसर लीजन बन जाते हैं और सर्वाइकल कैंसर बन जाते
5: तो सर आपकी नजरों में लड़कियों को ये वैक्सीन किस उम्र में लगवानी चाहिए, मतलब आइडियली किस उम्र में लगवानी चाहिए और उसी उम्र में लगवाना ज्यादा फायदेमंद क्यों रहता है?
6: हैं। आइडली तो देखो, जब भी आपका सेक्सुअल एक्टिविटी, जैसे हम बोलते हैं हमारे देश के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी 10 से लेके 12 या 10 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि 10 या 11 साल की उम्र में लग जाना चाहिए इंजेक्शन। पर जैसे अभी सरकार ने बोला है कि हम सब 14 साल की लड़कियों को लगाएंगे तो वो भी ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत वेरिएशंस है ना सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, तो एक एवरेज जो है 10 से 14 साल की जो उम्र है वो बहुत ही राइट एज है जहां पर एचपीवी वैक्सीन लगाने से आपको सर्वाइकल कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
5: और अगर सर हम आगे लगाएं जैसे मतलब 20 की उम्र के बाद, तो क्या इसका असर कम होता है, ऐसा कुछ है, या हम तभी भी लगवा सकते हैं?
6: नहीं, इसको आप बाद में भी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर यही है क्योंकि आपको इन्फेक्शन यदि आपको 12 साल की उम्र में हुआ है और वो वायरस पड़ा हुआ है उसके अंदर, तो फिर उसका जो असर होगा वैक्सीन का असर नहीं होगा। पर यदि आपका एचपीवी का एक्सपोजर ही 20 साल की उम्र में हो रहा है और आपने 19 साल में लगा लिया है तो आप बच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये एचपीवी इन्फेक्शन को बचाने का तरीका है, प्रिवेंशन का तरीका है वैक्सीनेशन।
5: तो सर जैसे हमारा ये इंटरव्यू हम गांव दराज में ब्रॉडकास्ट करेंगे और वहां के कम्युनिटी में ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगा, तो वहां पे अगर हम सर देखें तो माता पिता काफी झिझक महसूस करते हैं कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए, चाहे हम अभी कोविड का देख लें या अभी हम कोई भी केस देख लें, तो काफी झिझक महसूस करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, सब लोग हमारे श्रोताओं को, कि एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, वो लगवा सकते हैं? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
6: बिल्कुल, यू नो, वैसे मैं एक ब्रॉडली एक मैसेज देना चाहूंगा वैक्सीन के बारे में और आपको बताना भी चाहूंगा कि अब कुछ सालों से हमारे देश में वैक्सीनेशन के बारे में लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है, क्योंकि अधिकतर लोगों की वैक्सीन एक बहुत ही आसान तरीका है बीमारियों को बचाने का। जैसे आज के दिन जो बच्चों के टीके हैं हमारे देश में, 100 में से 75 बच्चों में टीके लग रहे हैं पूरे, जो आज से 20 साल पहले सिर्फ 40% बच्चों में लगते थे। तो कहने का मतलब लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, लोग ये जान रहे हैं कि वैक्सीन एक बहुत आसान तरीका है बीमारियों को बचाने का, और जो भी बीमारियां यदि हम बचा सकते हैं टीकाकरण से उसको बचाना चाहिए। उसी संदर्भ में यदि हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर को यदि आप बचाना चाहते हैं तो एचपीवी वैक्सीनेशन एक बहुत ही आसान तरीका है। इसका टीका लगवाने से आपको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और दूसरा, जो वैक्सीन आजकल बन रहे हैं वो सब वैक्सीन बहुत ही सेफ बन रहे हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी सेफ। और दूसरा जो है, जो सरकार दे रही है वैक्सीन उसमें काफी ध्यान दिया जा रहा है क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बन के आ जाता है, उसकी क्वालिटी का बहुत ही बारीकी से इंस्पेक्शन होता है और उसकी कोल्ड चेन वगैरह मेंटेन होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो एचपीवी वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है देश में, ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होता है और ये बिल्कुल सेफ है।
5: सर जब हम इसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि काफी अफवाह और गलतफहमियां जो हैं लोगों में सुनने को मिलती हैं, तो आप ऐसे कौन से भ्रम होंगे जो जिनको आप क्लियर करना चाहेंगे, लोगों के बीच में साफ करना चाहेंगे?
6: देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे अपने एक्सपीरियंस से, काम करने से इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के एरिया में। मैं कोई 10 साल तक मैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखता रहा भारत देश में, तो अक्सर ये देखा गया है कि जैसे बच्चों को बुखार, खांसी, जुकाम, लूज मोशन होते हैं, और जैसे उसे एक दिन पहले टीका लगता है तो लोगों को ये टेंडेंसी होती है कि उस बुखार, खांसी, जुकाम को या लूज मोशन को उससे लिंक करने की, कि हमने कल टीका लगवाया था इसीलिए मुझे खांसी हो गई, पर अदरवाइज भी तो बच्चों को खांसी हो जाती है, अदरवाइज भी बच्चों को बुखार हो जाता है। तो इस तरह के जो दिमाग में आपके जो वहम होते हैं कि हमको ये बुखार हो गया, हमको खांसी हो गई, उसका कोई टीके से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि इस टीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कुछ टीके, जैसे हम बोलते हैं डिप्थीरिया पर्टुसिस का जो टीका लगाते हैं बच्चों में, उसका हमें मालूम है कि उसको लगाने के बाद बुखार आता है, पर एचपीवी वैक्सीन के बाद तो बुखार भी नहीं आता है कुछ। तो ये बिल्कुल सेफ है, और बाकी इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी दर्द हो सकती है, और वो भी सबको नहीं होती, किसी को दर्द हो सकती है, और वो भी हरेक का अपना अपना एक इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स होता है। कई लोगों को सुई देख के डर लग जाता है, कई लोगों को सुई लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, बट फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही सेफ इंजेक्शन है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब एक्सेप्शनल केसेस में तो कोई भी चीज किसी को रिएक्शन कर सकती है ना, मतलब एक में से करोड़ों में से एक बच्चे को कोई चीज रिएक्शन कर सकती है। अब किसी को तो कोई खाने की आइटम भी खाते हैं उससे भी रिएक्शन हो जाता है, तो वो एक्सेप्शन वाली बात है। पर यदि ऐसा होता भी है तो उसके लिए, क्योंकि अभी जो इंजेक्शन है आपका ये हॉस्पिटलों में लग रहा है, तो आपका पूरा यदि कोई रिएक्शन होता है किसी को तो उसको मैनेज करने का पूरा इंतजाम होता है। पहले तो इसमें कोई रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, पर यदि कोई 1 in million 1 in crores यदि कोई पॉसिबिलिटी किसी को रिएक्शन किसी चीज से होता है या इंजेक्शन के डर से एकदम रिएक्शन हो जाता है, तो उसको मैनेज करने का पूरा इंतजाम होता है हॉस्पिटल।
5: तो सर, एक कम्युनिटी में एक जो बहुत मिथ है वो ये है कि ये वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन लगवाने से बांझपन हो सकता है, आप क्या कहेंगे इसमें कितनी सच्चाई है?
6: नहीं, कोई भी जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है उसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि एचपीवी वैक्सीन सिर्फ एचपीवी की बीमारी को बचाता है, इसका बांझपन से बिल्कुल भी कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है इसका।
5: ये बहुत जरूरी था क्लियर करना, क्योंकि अभी हम कम्युनिटी में देखते हैं तो बहुत ज्यादा झिझक इन्हीं कारणों से रहती है कि क्या पता आगे बच्चा ना हो, बांझपन हो जाए। तो धन्यवाद, आपने इसको क्लियर किया। तो पर सच, अब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो अगर कम्युनिटी में, गांव दराज में इसको लोग लगा सकते हैं, कौन से ये सरकारी वैक्सीन, और लोग कहाँ जाके इसको लगवा सकते हैं?
6: एक तो बड़ी खुशी की ये बात है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एचपीवी वैक्सीनेशन मुफ्त कर दिया है हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत ही महंगा इंजेक्शन है, ये प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स में हैं वहाँ पर इस इंजेक्शन की जो कीमत है वो 2,000 रुपया है एक इंजेक्शन। पहले ये इंजेक्शन सिर्फ जो जिन लोगों के पास पैसे थे सिर्फ वही लोग लगवाते थे, आम आदमी एचपीवी वैक्सीन नहीं लगाता था। अब क्योंकि सरकार ने सोचा कि ये एक बीमारी को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है, तब उन्होंने जितने भी सरकारी हमारी फैसिलिटीज हैं, चाहे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हों, आयुष्मान मंदिर जिसको हम आजकल कहते हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, अर्बन हेल्थ सेंटर्स हों, सब मेडिकल कॉलेजेस, इन सब जगह में अभी एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है, और आप वहां पर जा सकते हैं, और 14 साल की लड़कियों को अभी टारगेट किया जा रहा है, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की संभावना ज्यादा होती है, तो इसीलिए सरकार सब 14 साल की लड़कियों को ये टीका मुफ्त मिले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि आप इसकी जो फैसिलिटी अवेलेबल है इसको आप अवेल करें।
5: ये तो काफी अच्छा स्टेप है सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि गांव दराज में अभी भी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2,000 का वो वैक्सीन लगवा पाए। तो सर, इसका डोज कितना लगाना होता है? एक ही डोज इसका चाहिए होता है या और भी डोज चाहिए होते हैं इसके?
6: देखो, पहले जो वैक्सीन अवेलेबल था आज से 5 साल पहले, तब इसका 2 डोज 3 डोज लगाई जाती, पर अब नया जो वैक्सीन आया है, जो नई रिसर्च हुई है, उसके हिसाब से एक वैक्सीन की डोज भी काफी है। तो अभी सिंगल वैक्सीन डोज दी जा रही है, एक वैक्सीन से आप सर्वाइकल कैंसर को बचा सकते हैं, इतना आसान तरीका है।
5: सर, वैक्सीन पर हम महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर के बचाव की बात करें, तो महिला मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कदम उठा सकती हैं कि थोड़ा वो सेफ रहे, सेफ साइड पे रहे फॉरएवर?
6: तो उसके लिए ना एक तो 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली जैसे बताया कि आप एचपीवी वैक्सीन लगा लिया आपने, तो एचपीवी वैक्सीन से आपकी कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा देखा गया है कि जो होते हैं अपना सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखती हैं, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोलो या ओवरऑल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं, उनमें भी ये कैंसर की होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए अपनी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करें और उस समय जब पीरियड्स आते हैं पूरा सफाई का ध्यान रखें। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और तीसरी बात है यदि आप सर्वाइकल कैंसर को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग होती है जिसको रिकमेंड करते हैं कि हर 35 इयर्स के एज के बाद आपको दो दो बार अपनी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करनी है। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में एक पैप स्मीयर लिया जाता है, ये मालूम पड़ जाता है कि आपके अंदर सर्वाइकल कैंसर में, सर्वाइकल एरिया में कोई प्री कैंसरस लीजन तो नहीं बन रहा। तो यदि आप उस लीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसका इलाज भी तुरंत हो सकता है और आपको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना को वहां भी खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब सर्वाइकल कैंसर को तरीके हैं, सबसे पहले यदि आप टीका नहीं लगवा पाए किसी वजह से, अवेलेबल नहीं था और 35 की एज है आपकी, तो 35 की एज के बाद दो बार अपने को सर्वाइकल के लिए कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए नजदीक के हॉस्पिटल में जाओ, तो वहां पर वो स्क्रीनिंग भी बिल्कुल मुफ्त होती है और वो आगे सर्विक्स का, और उससे बता वहां कुछ दाना या यदि कोई दाग मिलेगा तो उसका तुरंत इलाज भी हो जाता है।
5: सर आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम चाहते हैं कि जाते जाते आप अपने हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दें ताकि माता पिता हैं वो इन सब चीजों को लेकर ज्यादा अवेयर हो और ये सब ये अब सही फैसला ले सके।
6: मेरा तो एक ही मैसेज होगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले ये जो टीका था सिर्फ जिनके पास पैसे थे वो लगाते थे क्योंकि बहुत महंगा था, अभी बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। तो मैं सोचूंगा कि अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां पर इस जो फ्री सुविधा है इसको अवेल करें और अपने को कैंसर से मुक्त रखें।
5: थैंक यू सो मच सर, हमारे श्रोताओं के सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें इतने इंसाइट्स दिए। थैंक यू सर।
6: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
3: अभी आप सुन रहे थे, विषय था HPV वैक्सीन और इस संबंध में बात कर रहे थे डॉक्टर अजय खेड़ा, इनसे बात कर रही थी स्मार्ट की सहयोगी। ये विशेष कार्यक्रम आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वैक्सीन जरूर लगवाइए। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों बच्चियों का ख्याल रखिए, लापरवाही मत बरतेगा। ये विशेष कार्यक्रम कैसा लगा 0120406025 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9-11। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda

सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो शारदा 90.8 FM।
5: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: सुनो

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं, और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे।

और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं? शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का, आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है, देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई।

0: देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन श्रद्धांजलि।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
0: देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन श्रद्धांजलि।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन श्रद्धांजलि। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच

होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं? शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का। आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है। देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, खेती किसानी में उपयोग होने वाली नई नई तकनीकों के बारे में, साथ ही मधुमक्खी पालन योजना की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका की। किसान मित्रों, पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। हमारे द्वारा की गई हर अच्छी और बुरी गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकृति में मानव ही सबसे अधिक बुद्धिशील प्राणी माना जाता है, इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण में इसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक बनती है, जिनमें खासकर हमारे युवा, क्योंकि युवा कल के भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण के बढ़ते खतरे के साथ युवा पीढ़ी से सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु परिस्थिति की नाजुकता देखते हुए आज ही आवश्यकता बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी के पास पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने की क्षमता है। अब बात आती है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं। तो युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसका उपयोग करके पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। युवा साथी अपने दैनिक जीवन में स्थायी आदतें अपना सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा की बचत करना, पानी का संरक्षण करना, साथ ही साथ कूड़े का प्रबंधन करना। और हमारे युवा साथी पर्यावरण परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पार्कों की सफाई करना और पर्यावरण संबंधी अभियानों में शामिल होना। इसके अलावा युवा नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे युवा साथी पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही पर्यावरण संरक्षण में हमारे युवाओं की भूमिका की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं चमन कपासिया।
1: अरे मानस

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे चमन कपासिया से ये उपदेश। किसान मित्रों, आज का जो युग है वो तकनीकी युग है। हर क्षेत्र में आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसी तरह हमारी जो खेती किसानी है उसमें भी आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं। इन तकनीकों का सीधे फायदा किसानों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हम मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। तो किसान मित्रों, आप भी ग्रीन हाउस खेती तकनीक का उपयोग करके बेमौसम की फसलें उगा सकते हैं और अधिक आमदनी ले सकते हैं। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का और गायक कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राजा हरिश्चंद्र और तारामती के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे सुनील चौहान और टीना पटौदी। किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को खेती के साथ साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान खेती के साथ साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान मित्रों, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही बी कीपिंग स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं तथा इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। और किसान मित्रों, अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू किया जाए तो कितना खर्चा आएगा। तो किसान मित्रों, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ सरकार की जो ऋण योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं और मधुमक्खी पालन से अपनी आमदनी और बढ़ा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह और किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी, किस्सा था हीर रांझे का। और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

प्रिय बंधु, आपके बीच पेश है किस्सा सत्यवान सावित्री। दोस्तों, उस मौके से बात कि जब सत्यवान के माता पिता सार्व देश के अंदर राजा द्युम्न का राज था। मेरे मेहरबानों, अंधे होने की वजह से उनके वजीर चौन राय ने एक चाल चलनी चाहिए, उसके दिल में बदी आ गई। उसने प्रजा को बहकाया कि राजा द्युम्न अंधे, इनसे राज नहीं चलेगा। तो दोस्तों, और उन्हें मरवाना चाहा। राजा द्युम्न को जो पता चल गई कि चौन राय वजीर में हमारे साथ में चाल चलनी चाहिए, तो राजमहल के बीचों बीच एक सुरंग खुदवाई और उस सुरंग के जरिए बियाबान जंगल की राही ले लेते हैं। दोस्तों, कई रोज गुजर गए, अब उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। तो सत्यवान के दिल में एक बात आई कि बियाबान जंगल में लकड़ी काटेंगे और उनको बेच करके माता पिता का और अपना पेट भरेंगे। कंगाली का समय था। दोस्तों, बुरे वक्त में आज सत्यवान राजकुमार कंगले के भेष में पास में एक शहर पड़ता था और एक सेठ जी के पास पहुंच गया। भला कैसे एक भिखारी के रूप में कहने लगा।

0: देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है, तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक

अपनी ससुराल में पहुंच गई और कई रोज गुजर गए, लेकिन जिसके साथ ब्याही थी नीरज उर्मिला से मिलने के लिए नहीं आए। प्रेमी दोस्तों, ये उर्मिला के लिए सबसे बड़ा वियोग और कलह का कारण बन गया। और एक दिन उर्मिला ने अपनी ननद के हाथों अपने प्राणनाथ को बुलवाया तो यूं कहने लगी, प्राणपति

0: मेरी एक बात तो सुनो।
1: दो सुना
0: के आप मुझे इतना परेशान मत करो, जो आप कहते हुए है नहीं वो मैं अपने घर जाके अपने माँ बाप से कहकर सारी चीजें दिलवा दूंगी तुम्हें।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: लेकिन आप मुझे इतना परेशान मत करो।
1: लेकिन विश्वास नहीं होता
0: अच्छा
1: कि सामान मिल जाएगा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं? शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का, आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है, देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रैवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ। हमारा FM स्टेशन लगातार यही कह रहा है और कहता रहता है कि हम सबको महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और यही एक वजह है कि अभी हाल ही में कुछ एपिसोड हमने बनाए हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। एक खास एपिसोड हमने बनाया हिंसा को नो, उसके अंतर्गत कौन कौन सी हिंसाएं आती हैं, कौन कौन सी हिंसाओं का सामना करना पड़ता है हमारी माताओं को, बहनों को, और यही सारी बातें इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई। हमारा फर्ज बनता है कि हम बातों को आप तक पहुंचाएं और आप अपने अधिकारों को जानें, समझें। और जब आपको लगता है कि अब वाकई मुझे अपने अधिकारों को जानना, समझना वाकई बहुत जरूरी है या आवाज उठाना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप अपनी आवाज बुलंद करें। आज के इस भाग में हम जो बात कर रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में, तो हम लगातार बात कर ही रहे, उससे अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों की संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकारों का संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006। केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निकाय की स्थापना करेगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगा। आयोग के कुछ कार्य इसके अंतर्गत आते हैं जिसके विषय में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप पर निजी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। आयोग किसी जेल या राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत किसी अन्य संस्था का दौरा कर सकता है। इलाज, सुधार या संरक्षण के उद्देश्य से रह रहे निवासियों की रहन सहन की स्थिति का अध्ययन करके राज्य सरकार को सलाह देना। संविधान या मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु किसी कानून के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उचित सुधारक उपायों की सलाह देना। मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए सलाह देना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और इसे बढ़ावा देना। समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकारों के बारे में साक्षरता फैलाना और प्रचार, मीडिया, सेमिनारों के जरिए इन अधिकारों पर अन्य उपलब्ध साधनों के जरिए जागरूकता लाना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत मानवाधिकार न्यायालय के विषय में। मानवाधिकारों के उल्लंघन के बढ़ते हुए अपराधों के मुकदमे तेजी से चलाए जा सकें, इसके लिए राज्य सरकार ऐसे मुकदमों को चलाने के लिए हर जिले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्धारित करा सकती है। अब इसी में बात कर लेते हैं विशेष सरकारी वकील के विषय में। राज्य सरकार हर मानवाधिकार न्यायालय में ऐसे मामलों के लिए एक ऐसा विशेष सरकारी वकील नियुक्त करेगी जिसे वकील के रूप में अभ्यास करते हुए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो चुका हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके विषय में जानना समझना वाकई बहुत जरूरी है कि हमारे अधिकार क्या हैं, सरकार हमारे लिए क्या क्या सुरक्षा मुहैया कराती है, हमें किन किन बातों का लाभ उठाना चाहिए, अपनी बातों को कब सामने रखना चाहिए और कब कानून के जानकार होने के नाते आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए वक्त एक छोटे से अंतराल का, कहीं आप जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मैं हूं गगन आपके साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। अब हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं और बस यही कहना चाहते हैं कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकार पता होनी चाहिए और वक्त आने पर वो अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। और ये भी सच है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिला घर की लक्ष्मी होती है ना, कोई नहीं चाहता कि उसका वो कोई दूसरा रूप देखे, चाहे वो दुर्गा का हो या काली का हो। इसलिए हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संशोधित अधिनियम 1995 में संशोधित हुआ था और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ज़ोरोअस्ट्रियन, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। आयोग के कार्य क्या है? अल्पसंख्यकों के विकास का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु

सुरक्षा उपायों के कारगर कार्यान्वयन के लिए सलाह देना। अल्पसंख्यक समुदायों से कोई भेदभाव हो रहा है तो उसके कारणों पर अध्ययन करना और उस भेदभाव को हटाने के उपायों के सुझाव देना। अल्पसंख्यकों से भी संबंधित मुद्दों और उनकी कठिनाइयों पर समय पर रिपोर्ट देना। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है आपराधिक कानून संशोधित अधिनियम 2013। ये एक भारतीय कानून है, इसे लोकसभा ने 19 मार्च 2013 और राज्यसभा ने 21 मार्च 2013 को पारित किया था। ये अधिनियम यौन अपराधों से संबंधित कानूनों पर भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अपराधी प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन उपलब्ध कराता है। अब हम इसी में बात करना चाहते हैं अपराध और दंड के बारे में। एसिड से हमला तो दंड क्या? कम से कम 10 वर्ष की जेल की सजा जो आजीवन कारावास में बदली जा सकती है और चिकित्सा खर्च की पूर्ति के लिए न्यायोचित जुर्माना होगा जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। एसिड हमले का प्रयास, दंड आता है कम से कम 5 वर्ष की जेल की सजा जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, 3 वर्ष की जेल की कठोर सजा, जुर्माने बिना या जुर्माने सहित अगर अपराध खंड 1, खंड 2 या खंड 3 में वर्णित के अंतर्गत आता है, 1 वर्ष तक की जेल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है इस अपराध के अंतर्गत। और इसी में धारा 354 में संशोधन, जेल की सजा जो कि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, इसे बदलकर अब इस प्रकार रखा गया है जैसे कि जेल की सजा जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से की गई गतिविधि, दंड इसके अंतर्गत आता है कि कम से कम 3 वर्ष की जेल की सजा जो जुर्माने के साथ 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। दृश्य रति यानी पहली बार सजा के तौर पर कम से कम 1 वर्ष की सजा जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरी बार और उसके बाद कम से कम 3 वर्ष की जेल की सजा जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पीछा करना, पहली बार अपराध के लिए जेल की सजा जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। अनैतिक व्यापार, इसके अंतर्गत बात सामने आती है यानी कि दंड वाली बात, वो इस प्रकार है, अनैतिक व्यापार करने वाले को कम से कम 7 वर्ष की जेल की कठोर सजा हो सकती है और जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। अगर अपराध में 1 से ज्यादा व्यक्ति शामिल हैं तो कम से कम 10 वर्ष की जेल की कठोर सजा या आजीवन कारावास में बदली जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अगर अनैतिक व्यापार किसी अवयस्क का किया गया है तो 10 वर्ष की जेल की कठोर सजा जिसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। अगर 1 से ज्यादा बच्चों की खरीद बिक्री की गई है तो कम से कम 14 वर्ष की जेल की कठोर सजा जिसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा बार अनैतिक व्यापार के अपराध में पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उसका बाकी का सारा जीवन जेल में गुजारना होगा और जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के अनैतिक व्यापार में शामिल है तो उस लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास की सजा होगी, जिसका अर्थ है कि उसे बाकी का अपना जीवन जेल में बिताना होगा और जुर्माना भी हो सकता है। चलिए, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। एक अच्छी खास जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं, तो बस आपका फर्ज बनता है कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। 0120-4020-605 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर, और बस अपने अधिकारों को जानें, समझें और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अगर कहीं कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो अगर आप कानून के जानकार हैं या नहीं है तब भी आप कानून का सहारा ले सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।

आपका मित्र बन सकता है हिम्मत ऐप, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले बात करना चाहता हूँ वन स्टॉप सेंटर यानी OSC के विषय में। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि वन स्टॉप सेंटर निजी और सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिला को सहायता देने के इरादे से बनाए गए। शारीरिक, लैंगिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं की उम्र, वर्ग, जाति, शैक्षिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति से निरपेक्ष उन्हें चिकित्सा संबंधी कानूनी मनोसामाजिक सहायता दी जाएगी। ये हिंसा से प्रभावित सभी महिलाएं, जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां भी शामिल होंगी, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र से हों। तो वन स्टॉप सेंटर जो कि शारदा विश्वविद्यालय भी इस क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर, गौतम बुद्ध नगर पुलिस के साथ मिलकर, और हमारा जो एक विश्वविद्यालय का स्कूल है, लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो जानकार हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वो भी इस तरीके से समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस सेंटर में जा सकते हैं तो आप जरूर विजिट करें, या अगर आपको लगता है कि शारदा विश्वविद्यालय आप आना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर मुलाकात कर सकते हैं। 0120-4060-2005 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी जो तीनों साइट्स हैं उसके जरिए, यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं तीनों सोशल मीडिया का, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, उसके जरिए भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में बहुत सारी बातें हुई और इस पर हमने 4 भाग यानी कि 4 एपिसोड आप तक पहुंचाए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। फिलहाल अपने शब्दों को विराम देते हुए मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए, सुनो शारदा 90.8 FM और महिलाओं का सम्मान करते रहिए। नमस्कार।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का

जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर

90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपने जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा

जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है, मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है, ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं? शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का, आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है, देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
0: यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकल।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो
0: रिंग कर बाहर निकले। दरवाजा जांचे। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए

हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं? शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का, आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है। देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या हो बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
3: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: तो इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
1: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
0: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाय तारा।
1: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
1: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
2: अरे तारा ये क्या?
1: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
1: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
1: और नल या पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
1: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन अब हम खेलें।
1: ओके। तारा मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खरी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
1: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
1: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
1: अरे बाबा रे, तो फिर

0: जरूरी।
1: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
0: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
1: ओके
0: अप्पा।
2: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
3: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
2: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
3: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया।
3: अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है?
3: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो। आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
2: पाँच साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
3: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
2: तो नहीं है आपके आहार में दम,
3: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
2: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
4: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं? शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का, आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है। देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या असल मायने में हम आजाद हैं?
1: शायद नहीं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं। कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं भाई? हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो आपस में प्यार नहीं करने देती। हम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, हम गुलाम हैं उस सोच के जो दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देने देती। एक वक्त था जब एक नशा था देश को आजाद कराने का। आज का युवा गुलाम है नशे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा राइट है, हमें ये तो याद है। देश के प्रति भी तो हमारा राइट है, ये हमें याद रखना है। हम परतंत्र हैं उन बुराइयों के, कुरूतियों के, हमें उनसे आजादी चाहिए, तब है असल मायने में स्वतंत्रता। आइए एक कदम देश को विकसित करने में बढ़ाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी जान की बलि दे दी थी भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसे महान सेनानियों को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नॉट्स कोर्स एक समान। रघु ने तो पूरा किया कोर्स, मगर राघव बीच में ही बंद की दवाई। रघु हो गया चंगा, पर राघव की टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सके। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बता दें। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल आईक्यू तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आरके शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम ख़राब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना काम ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत ज़रूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखना है हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी रहती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: की जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह की जगह उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें, बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक
0: हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता है, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं औरतें हैं बच्चों को लेकर, कई रिश्तेदारी में आना जाना कर रही है और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट खोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए तो टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सब के पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
1: एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल होता काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंग हो सकता है, जितना हो सकता है ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाए, आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सो

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है, जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं, या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें, जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो।

10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।